FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

العالم يا زلاطه.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: It's not the system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Black.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is the manner in the house. Come on.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: और वो फिर बीमारी दूसरे ऊंटों को भी लग जाती है। तो गए कि आदवा हो जाता है कि एक ऊंट से दूसरे ऊंटों को बीमारी फैल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब ये दिया, आपने फरमाया कि ये बताओ कि पहले जो ऊंट को बीमारी लगी है वो बीमारी कहाँ से आई है। तो आप उसका जवाब जो है वो कोई नहीं था, तो साहबा ने कहा कि वो तो खुद ही बीमारी लगी है। तो फरमाया कि फिर वो बीमारी जो आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, खुद बीमारी के अंदर कोई तादी नहीं है कि एक बीमारी दूसरे आदमी को लग जाए या किसी जानवर को लग जाए। इसे फरमाया आदवा, आदवा नहीं आया। लेकिन जहां आपने ये फरमाया वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत कर
3: अऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, थोड़ा सा हम लेट हो गए जिसके लिए माज़रत ख्वाह है। 11:50 हुआ चाहते हैं। 26/7/2026 का प्रोग्राम है, संडे का दिन है, मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है और बारिश के भी इम्कान है। समय वक्त हुआ चाहता है खिताब का। खिताब फरमाएंगे हज़रत मौलाना फारूक सुल्तान साहेब।
0: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन अम्मा बाद। ये सफ़र का महीना है, इसकी मुनासबत से हमारे पिछले दर्स में इस महीने के अंदर जो ज़माने जाहिलियत में ख़ास काम किए जाते थे उस बारे में हमारी बात हुई थी कि ज़माने जाहिलियत में जब ये यानी इस्लाम से पहले ये अरबों में यह आदत थी कि ये महीना जब आता था इसको अपने लिए मनहूस समझा करते थे कि ये मनहूस महीना आ गया है, और उसकी वजह भी बता दी थी। फिर मैंने आपके सामने आरज की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ज़माने जाहिलियत की वो आदत रस्म और रवाज जो इस महीने में की जाती थी और इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी रस्म और रवाज या आदतें जो है या जो उनकी चीज़ों के कल्चर में थी जो इस बात पर दलालत करती हैं कि कोई मखलूक गैब का इलम जानती है या किसी मखलूक के जो है हाथ में किसी इंसान का नफा या नुकसान है, ये बहुत सारी ज़माने जाहिलियत में ये चीज़ें पाई जाती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के उन तमाम जाहिलियत की जो है उन आदतों को उन रस्म और रवाज को बातिल करार दे दिया और इस्लाम का अकीदा ये बताया कि जो है नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है और दुनिया की कोई मखलूक कोई जमान या कोई मकान वो ना किसी इंसान के नफे का मालिक है किसी ना नुकसान का मालिक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ज़माने जाहिलियत की जितनी आदतें उनको बातिल करार देने के साथ साथ फिर आगे जो है इन चीज़ों को भी जो लोगों के अंदर रस्म रवाज जो हो जाते हैं ये सितारों से बदफाली लेना नजूमियों से जो है बदफाली लेना या इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें आज कल ज़माने में पाई जाती हैं इन सारी चीज़ों के इस्लाम में नफी कर दी है और इस्लाम का अकीदा बड़ा वाजे करके ये पेश कर दिया कि किसी भी चीज़ के पास कोई किसी इलम के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान के कल की बात को बता सके गैब की बात को बता सके किसी के रिजक में नफा या नुकसान या औलाद ये चीज़ें ये किसी के इख्तियार में नहीं है, सारी चीज़ें अल्लाह पाक के इख्तियार में। जैसे इस्लाम ने यह अकीदा दिया कि जब इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है इसलिए बंदे का नफा नुकसान ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास से ही आता है। हाँ ये उसमें ज़रूर बताया है कि खालिसतन जो नफा होता है जो फ़ायदा होता है जो रहमत होती है जो इंसान के सआदत होती है ये खालिस अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इसलिए कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, इन लोगों को ये बता दो कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں. 12:17 ہوا جاتے ہیں. سامعین, موسم اچھا ہے, بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور آن دا ہول بارش بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے. زوردار بارشیں, چونکہ ساون کا مہینہ جو ہے وہ گس جلدی شروع ہونے والا ہے, تو شاہ صاحب سے ہم بہت ساری خبریں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں, وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی کرتے ہیں. تو ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. شاہ صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو میرے سب السلام علیکم. موسم بہت پیارا ہے اس وقت, 18-19 ڈگری گرمی ہے اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کبھی دھوپ کبھی بادل, لیکن جو پیش ہوئی ہے کہ موسم جو ہے شام کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بادل برسیں, لیکن کس وقت برسیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس وقت وہ آئیں گے, کیونکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اور جب وہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لیکن طوفان نہیں آتا. تو یہ سب کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کا دنیا اس کی ہے, کیسا موسم ہوتا ہے. تو راجہ صاحب, لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اب چھٹیاں جو ہیں, کافی لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں کل سے ختم ہو رہی ہیں, کافی بان ہیون جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں, تو کافی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ لوگوں نے مختلف ٹائموں میں چھٹیاں لی ہوئی ہیں, کچھ کی چھٹیاں جو ہیں وہ کل منڈے کو ختم ہو جائیں گی, لوگ بان ہیون میں بچے جانے شروع ہو جائیں گے, کچھ جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں ختم ہوگی, کچھ اسکول وغیرہ جو ہیں وہ 3-5 اگست تک یہ اسکول وغیرہ بھی کھل جائیں گے. تو اس طرح پھر جو زندگی کا ایک پیا ہے وہ دوبارہ چل پڑے گا. جی راجہ صاحب,
0: تو شاہ صاحب سیاسی پہ یہ آج کب چلے گا؟
1: دیکھیں جی, اس وقت دو سیاسی پیے یہاں پہ گرم ہیں, ایک ڈینش سیاسی پیا اور دوسرا جو ہے وہ مینگو سیاسی پیا, اور جو مینگو سیاسی پیا ہے وہ تو 8 کو یہاں پہ البسٹون میں دوبارہ لگنے جا رہا ہے, اور وہ 8 اگست کو, اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ 14 اگست منائی جا رہی ہے, اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے تک چلے گا. اور اس کے بعد
0: شاہ صاحب سارا نام جو ہے پاکستان فیسٹیول کے نام سے آتا ہے.
1: جی, یہ مینگو جو ہے یہ پاکستان فیسٹیول کے نام پہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو منا رہی ہے, اور باقی جو ہے وہ میرا خیال میں 19 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے, تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کر رہے ہیں, لیکن میری نظر سے گزرا تھا کہ 19 کو بھی ایک مینگو فیسٹیول ہوگا.
0: تو 16 اگست بھی منایا جا رہا ہے.
1: جی, اب لوگ دن منائیں گے کوئی 12 کو, لیکن جو آفیشیل جن کے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں, جن کا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے, تو ان کا تو ہمیں علم ہو جاتا ہے, لیکن جو صرف ابھی اندازے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.
0: تو چلیں شاہ صاحب, آفیشیل تو 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں ہوتا ہے, پرچم کشائی ہوتی ہے, تو وہ تو ہر سال کی طرح اسی طرح ہوگا. تو شاہ صاحب, اب جو سیاسی موسم ہے یہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے, چھٹیوں پہ چلا گیا ہے, خالی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں سیاستدان.
1: جی, اس دفعہ سیاستدانوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی لے دے ہو رہی ہے, صرف یہ نہیں کہ ہم ریڈیو پہ ہی ان سے بات کرتے ہیں, بلکہ اب عوام الناس جو ہے, عام لوگ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے ینگسٹرز کا, کیا فائدہ ایسے لوگوں کا جو اہل زبان ہونے کے باوجود ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دے رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی گڑبڑ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 11 دن کے اندر یہاں پہ 7 چھریوں کے حملے ہوئے ہیں کوپن ہیگن کے اندر, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 11 دن میں 7 حملے ہونا, اور ان کے اندر सिर्फ सारे फॉरनर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरनर्स की है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे यहाँ के रहने वाले दूसरे आगे पीछे बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पुलिस ले रही है, और ये पब्लिक प्लेसों के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे मेन स्टेशन पे या पब्लिक प्लेस जैसे फील्ड्स होगी, सेंटर्स हो गए, इनके अंदर इस तरह की बदमाशी
0: लेकिन
1: करने से
0: ये जो
1: जो
0: है जितनी जो कारोबारी ये जगह हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ तो हर तरफ हर कोने खुरदरे में जो है वो कैमरे लगे होते हैं, कोई चीज तो छुप नहीं सकती शाह साहब यहाँ से।
1: जी वो छुपती नहीं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जलालत ये है कि वो खुद तो अपने दिमागी या रंजस की वजह से किसी के ऊपर वार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बदनामी जो है वो सारे फॉरनर्स की हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये 15 साल से लेके तो 20 साल 21 साल की उम्र
0: तो
1: के
0: शाह
1: हैं,
0: साहब इन बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए ना, स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद माँ बाप का भी तो हक बनता है, वो भी तरबियत करें। कुछ बच्चे जो इंसाफ भी नहीं मिलता, तो बच्चे जो हैं वो अपना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसाफ नहीं जब मिलता।
1: राजा साहब जब लुटेरे घर का सफाया कर जाएं, डाकू डाका मारने में कोई चीज ना छोड़े, तो उस घर के अंदर भूख की हालत होगी। यही हाल यहाँ हमारे चीजों का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मुझे कोई दो राय नहीं, जब यहाँ गवर्नमेंट ने शुरू से ही ऐसे पोलियो रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो कल्चर के लिए जुमले में आता है, यानी कि आप अभी कोई कल्चर करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गेम करना चाहते हैं, आप कोई बस टूर करना चाहते हैं, कोई भी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक गवर्नमेंट ने यहाँ कम्यून ने अदारे बनाए हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी 50-60-100 बंदे की मेंबरशिप करके वहां से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं हर चीज, लेकिन ये मेरा काम नहीं बताने का, ये काम है जो यहाँ के सियासतदान है, जो यहाँ कहते हैं जी ओ जी असी तो बहुत बड़ी डैनिश जबान बोल रहे हैं जी, असी तो PhD हैं जी, असी तो बड़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़ के आए हैं, क्या वहां पे ये सियासत पढ़ रहे थे? अगर सियासत पढ़ रहे थे तो क्या वहां पे ये लॉ पढ़ रहे थे? भाई आकर सामने बताएं तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो बताएं, बाहर तो निकले अपने, ये जो क्राइम आज हो रहे हैं, अगर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को बराबर के हकूक मिले होते हैं जैसे डेंचो के होते हैं, तो ये कभी भी क्राइम ना करते।
0: शाह साहब हकूक तो मिलते हैं, हकूक लेने का आपने जिस तरह तरीका बताया, शाह साहब मैं ज़रा आता हूँ महंगाई की आपने बात की है, तो शाह साहब अगर एक महीने में 5-6 मेले होते हैं, तो एक फैमिली वाला अगर हर मेले में जाकर 250-400-500 करोड़ खर्च करके आ जाता है, तो शाह साहब एक पेंशन वाला कैसे फिर गुजारा करेगा, बच्चों के साथ जाएगा, कोई 1000-1200 लगा के आ जाते हैं। तो शाह साहब हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, हम अब गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सड़क पर आप खड़े हो जाएँ तो कहीं आपको गुर्बत नज़र आती है, किसी स्टोर में चले जाएँ आपको कहीं गुर्बत नज़र आती है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ, शहर वाली जगहों पे चले जाएं, झूलों वाली जगहों पे जाएं, कहीं आपको गुर्बत शाह साहब नजर आती है, किसी मेले में चले जाएं, कोई आपको गुर्बत नजर आती है?
1: नहीं, हमें वो तो हमें माजरत के साथ एक फैशन शो नजर आता है कि हर कोई अपनी जो है, हर कोई अपने ड्रेस का या अपने पैसे का ताकत या अपनी गाड़ी या दूसरे इमारत की शो जो है वो सामने,
0: शाह साहब महंगाई का जिक्र तो नहीं होना चाहिए ना?
1: नहीं, देखे वो भी जमाना था जब हम बसों पे सफर करके काम पे जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, घोड़े घोड़े बर्फ पड़ती थी उस वक्त, उसके अंदर कई कई मील लोग पैदल चल के जाके काम करने जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, खनेलेट होते थे, उनके अंदर 5 करोड़ का पेट्रोल डलता था, तो वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते वो गुजारा
0: तो
1: कर लेते थे,
0: लोग स्टेट को गिला नहीं करना चाहिए ना?
1: नहीं, स्टेट को नहीं है, हमारे अपने अपने जो रवायात हैं, हमारे हमने अपनी रवायात को बदल लिया है, हमने 2 कल्चर बना लिए हैं, हमने सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर बनाया है, हम शो मारने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे, पहले तो आप ये हिसाब लगाएं, आप अकेले जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, तो कम अज कम 25-30-50 हजार करोड़ का खर्चा है जो आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आपने फैमिली स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे भी आपने हर चीज रखना है, गाड़ियाँ रखनी है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं, जो बच्चों का हक है उनको आप नहीं दे रहे। अब बच्चे जो हैं अब छुट्टियों से वापस आएंगे, आप खुद निकल जाएं, आप जर्नलिस्ट टाइम बाहर निकल जाएं, जाके बच्चों से पूछें आपने बेटा कहाँ पे छुट्टियां गुजारी, तो वो कहेगा कि फलाने कजन के घर चले गए, फलाने के पास चले गए, मैंगो फेस्टिवल चले। तो जो डैनिश बच्चे हैं उनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी हम इटली गए, हम टर्की गए, हम इजिप्ट गए, हम फलानी जगह गए, हमने फलानी जगह स्केटिंग की, हमने फलानी जगह फिशिंग की, वो ऐसी बातें आपको बताएंगे। तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती तौर पे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर वो करते क्या हैं, वो फिर पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आदमी कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि ये हमारा डिफरेंस क्या है। वो अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाता है, वो बाहर भागता है और बाहर जाके वो क्राइम करता है। तो इन चीज़ों को देखें, आप हमारे ड्रामे देख लें, हमारे कल्चर देख लें, आप घर में बैठे हैं ड्रामा आपने लगाया देखा है स्वाइड वो उसके लव मैरिज, ये शादी किसी से हुई है, लव किसी से हो रहा है, ये सारा का कल्चर हमारा जो है, हम लोगों ने कभी भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं की, खुद ही इसके ऊपर इसकी तबाही के हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कितने घर हैं, यहाँ पे अगर आप जाकर किसी से गवर्नमेंट से बात करें, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चियों के हकूक कैसे किस तरीके से पमाल हो रहे हैं, हमारी बहनों के बेटियों के हकूक कैसे पमाल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर यहाँ का जो कानून है वो उसकी पमाली की जाती है। तो राजा साहब ये जो
0: शाह साहब हम कोई काम कानून के मुताबिक नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ मांस व गिले करने के अलावा हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है।
1: देखिए जी जो भी इस वक्त बात होगी, आप किसी मैंगो फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी डिजाइनर फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी आप गाने बजाने वाली महफिल में चले जाएं, यहाँ के काउंसलर्स आए होंगे, यहाँ के सियासतदान आए होंगे, वो घूम फिर के बात होगी अपने गांव की, घूम फिर के बात होगी अपने इलाके की, घूम फिर के बात होगी कि मैं किस मिनिस्टर को मिसा, मेरा कजन कौन जनरल है, मेरा कजन कौन बड़े बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, ये बातें आप सुनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, हकीकत बिल्कुल बरअक्स होती है।
0: शाह साहब आते हैं, दोबारा वापस आते हैं, शाह साहब आपसे ये सवाल भी करते चले, शाह साहब इलेक्शन जमहूरी इलेक्शन होना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जमहूरी जितने इलेक्शन होंगे बेहतरी आएगी। तो शाह साहब जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ आपको 20-20, 20-20, 40-40 लाख लगाने की जो है वो इजाज़त होती है अपने इलेक्शन कंपेन में, करोड़ों अरबों का इलेक्शन हो जाता है, जलसे जुलूस हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जाते हैं, उनकी खातर तवाज़ा होती है, तो शाह साहब जब इतने अखराजात करने के बाद जमहूरियत फिर भी उस तरह की नहीं आती, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग बनते हैं जिन्होंने लगाया होता है फिर वो उन्होंने अपना पूरा भी करना होता है और उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जी फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। शाह साहब अपने करतूत हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, शाह साहब इसकी क्या वजह है?
1: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शोबाजी के लिए या अपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को छुपाने के लिए जो उनका कारोबार होता है उसको छुपाने के लिए वो सियासत में आ जाते हैं, और जब वो सियासत में आते हैं तो फिर उसको ताकत देने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग जो हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप ये देखें कि आपने बात की तो आपने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, वहां पे एक डॉक्टर एक बच्चे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो है वो एक मामूली से मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ जो उसने डिपॉजिट कराना है वो 25 से 30 लाख रुपया है। अब वो 25 से 30 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, उसको कौन देगा, क्या उसको कोई बैंक एसयू मिल रही है, बैंक लोन दे रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरीके से इंजीनियर, इन्होंने एजुकेशन को इतना इतना गंभीर इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि लोग जो है और बस शोशा और कुछ सबसे बड़े मुजरम हम हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं क्योंकि मैं इस माशरे का एक हिस्सा हूं। हम लोग जब वहां जाते हैं बच्चियों की बेटों की शादियां करते हैं, एक महीने के लिए हम जाते हैं, टोयोटा लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियां हम वहां रेंट पे ले लेते हैं और फिर वहां पे शो मारते हैं, ये हमारी कोठी। तो अब उनको ये पता नहीं है, उन लोगों को ये पता नहीं कि हम यहाँ किस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, हम यहाँ किस तरह। ये अच्छी बात है कि अब आगे हमारी जो जनरेशन हैं, सेकंड और थर्ड जनरेशन, ये अच्छे अच्छे ओहदों पे यहाँ पे लग गए हैं, लेकिन इससे पहले तो हम सब मजदूर थे। यहाँ पे कौन सा डॉक्टर था, कौन सा इंजीनियर था, कौन कुछ था,
0: लेकिन शाह साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपके शाह साहब आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं और हकायक की रोशनी को सामने रख कर रोशन करें। शाह साहब, क्या यहाँ डेनमार्क में रहते हुए अपनी सियासी जमातें होनी चाहिए या डेनिश सियासी जमातों में हिस्सा लेना चाहिए?
1: देखिए जी, मैं तो प्रायोरिटी दूंगा कि यहाँ पे डेनिश सियासत जो है उसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, खा वो पाकिस्तानी जमातें क्यों ना हो, खा वो पाकिस्तानी जमातें यहाँ रख रहे हैं, उन सबको ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने आवाम के लिए यहाँ की सियासत में को सबसे पहले नंबर वन समझे, यहाँ के लोगों को इनवाइट करें जो आइन को समझते हैं, जो यहाँ के तरीकाकार को समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 90% बल्कि 90% ही 99% जिस वक्त हमारे यंग काउंसलर पहली दफा इलेक्ट होते हैं, लोगों को गुस्सा तो लगेगा लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूँ, तो उनको ये नहीं पता कि उम्बसमैन जो होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो यहाँ हमारे कम्यूनों में या अपने मुख्तलिफ अदारों में बैठे होते हैं, वो उनको किस तरह ट्रिकल करना है, उनसे किस तरह हमने सीखना है। वो जब सीख जाते हैं तो 4 साल गुजर जाते हैं, या फिर अगली दफा 4 साल के लिए वो इलेक्ट नहीं होते बदकिस्मती से, क्योंकि उनको उनको तजर्बे थे, या फिर अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो कुछ अरसे के बाद कई अच्छी नौकरी करने उनको मिल जाती है क्योंकि वो सियासत में रहे होते हैं। तो ये याद रखें कि हमारे लोग मेजॉरिटी जो हैं वो दो मकासद हासिल करने के लिए सियासत में आते हैं, एक अपने फैमिली अपने इलाके में अपना नाम रोशन करना, हालांकि ये वो ही काउंसलर हैं जो पाकिस्तान में काउंसलर होते हैं और वही पार्लियामेंट के मेम्बर हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तो इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं। असल में बात यह होती है कि आपका कद काठ तब ऊपर जाता है जब आप अवाम के लिए कुछ करते हैं। चलो पाकिस्तान में तो फिर वो नालियां सड़कें और लोगों को कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे तो एक मिनट के लिए इनके पास टाइम नहीं कि यहाँ आकर, मैं 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं आपके रेडियो पे ये बिल्कुल बगैर किसी खौफ और खतरे के ये बात करता हूँ कि देखे कि पूरे डेनमार्क के अंदर बाउ सर्विस जो है वो उलेनिंग के साथ जो है वो उलेनिंग डॉक्टरेट के साथ वो काम करते हैं। सिर्फ जो ये हमारा वेस्टाइन है और कोपेनहेगन, यहाँ के लोगों को नेस्ट विज वहाँ उलेनिंग डॉक्टरेट में खुद जाना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है, ये क्यों नहीं लोग कहते कि हमारे लोगों को जो है ये सहूलत दे?
0: तो शाह साहब, इससे पता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत डेनिश की सियासत से।
1: जी एक दफा फिर कहिएगा।
0: तो शाह साहब, इससे तो फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा सहूलियात है, डेनिश सियासत में सहूलियात नहीं है।
1: नहीं जी, डेनिश सियासत में सहूलियात हैं, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपने आप को सही सियासत में देखे। सियासत जो है, आप जब अवाम के लिए, दो किस्म की सियासत है, एक है क्रिमिनल सियासत जिसके अंदर आप कमाई करना चाहते हैं, आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने आप का कद काठ ऊंचा करना चाहते हैं। एक सियासत होती है ईमान की, जिसके पीछे आप अपने ईमान को पुख्ता करते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं, आप अपने मुखालफिन जो है उनके लिए काम करते हैं, क्यों वो उन्होंने बेशक आपको वोट दिया या नहीं वोट दिया, आपको डाउट हो सकता है कि उन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं वोट डाला, लेकिन सब लोग जो होते हैं जो आपके एरिया में रह रहे हैं आप उनके लिए काम करते हैं, तो ये चीजें जहाँ सियासत में।
0: तो शाह साहब चले आते हैं ये टेक्सा की तरफ, ये गाड़ियां जो मैं देख रहा हूँ कि इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो नई कंपनी आ रही है, नए ड्राइवर आ रहे हैं तो नए मुलाजम आ रहे हैं। शाह साहब, इसमें कोई दो रोशनी डालें इस पर।
1: ये बिल्कुल, ये ग्रीन जो वियतनाम की टैक्सियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे जो है वो एनसेट कर लिए, रखे ही हैं ड्राइवर। और देखें, बेशक ये कानून की खिलाफ वर्दी है कि ये 34-35 हजार जो मिनिमम, जो इन्होंने 47,000, अगर आप गूगल करें ना तो डेनमार्क ने जो दुनिया को बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो तनख्वाह है महीने की वो 47,000 करोड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसलिए डेनमार्क को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे 29,000 करोड़ पे जो है ये लोगों को इन्होंने एनसेट किया, लेकिन उसके साथ कुछ उन्होंने लोजमात ये रखे हैं कि आपको हम जो है थोड़ा सा बोनस वगैरह भी देंगे तो जो है। लेकिन ये जो 29,000 की जॉब है, ये इसके अंदर आपने 5-6 घंटे काम करना है उसके अंदर, क्योंकि आपको काफी पॉज भी होगा, आपको फोकस पॉज भी होगा आपके लिए, तो वो 7.5 घंटे की, जो 7 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि आपने वापस जाके उनके दफ्तर में जहाँ उनका लैग है, जहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, वहां आपने खड़ी करनी है, तो आपको 7.5 घंटे के अंदर ये सारे मरहले तय करने हैं। तो अब वो सबसे बेहतर है कि बनिस्बत के आप, जैसे कि कल मैंने ये बताया था कि एक आदमी अपना रॉसकिल्डे से 552 करोड़ के अंदर जो है वो रॉसकिल्डे से लुफ्तावन, कोपनहेगन लुफ्तावन में टूर लेके गया, और वो भी म्यूर चीज के अंदर। तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है? अगर वो वोन मैन है तो उसको तो 100 करोड़ से भी कम पैसा जो है वो बचत हुई, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा है टैक्सियों की जो आप ले रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो है ना, मैं उनका मशीर हूँ ना मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि इसने जो है वेकअप कॉल दे दी है, और अब लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब हम बात
0: तो
1: करते
0: शाह साहब,
1: थे कि
0: इसका
1: खुदा
0: फायदा
1: रहा
0: मालकान को होगा या पब्लिक को होगा?
1: इसका कंपनियों को फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को यह है कि कल एक आया हुआ था पेपर में, बल्कि आज भी आया हुआ था, मैंने आपको कटिंग भेजी ताकि कोई बंदा एतराज करे तो आप उसको वो भेज सकते हैं। उसके अंदर ये है कि अब आप हेलसिंगोर के अंदर आप खुद जाके टैक्सी को वेल कर सकते हैं, कौन सी टैक्सी आपकी नजर में बहुत सस्ती है और आप उसके अंदर बैठ के जाना जान चाहते हैं। आप पहली दो तीन आगे ही होता था, जो पहली गाड़ी है आप उसी को, उसी में बैठ के जाएं, लेकिन अब जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, टैक्सी है स्टेशन पे खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं, आप वैल्यू कर सकते हैं कि इस टैक्सी में। तो अब लोग अगर ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ जी, एक कहता है जी मैं 2,000 में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ जी मैं 1,500 में, मेरे पीछे कोई खड़ा वो कहता है जी मैं 1,000 में, तो वो बंदा जो है वो 1,000 वाले की तरफ चला जाएगा, वो लेकर टूर चला जाएगा। अब कंपनियों ने ये जो काम किया है इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि इस वक्त 97% पूरे डेनमार्क के अंदर 97% फॉरनर टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं, कैब ऑनर भी फॉरनर्स हैं। आप यूलैंड में चले जाए, फ्यून में चले जाए, आपको हर जगह फॉरनर नजर आएगा। और ये जो फॉरनर्स जो हैं, इनके इनसे क्या होगा कल को, ये सारे के सारे जब ये कंपनियां जो हैं ये स्कूलों के बच्चों को ड्राइव करना शुरू कर देंगी, ये इन्होंने तो पैसा कमाना है, ये तो अमीर आदमी है, इनको तो परवाह नहीं। इन्होंने कहा जी ठीक है हम बच्चा ड्राइवर भेज देते हैं, ड्राइवर को क्या, उसको उसने तो वेज लेनी है, उसको तो टूर का, उसकी तो उसका मसला ये नहीं कि उसको अब 500 का 1,000 का टूर मिले, 2,000 का टूर मिले,
0: चलें,
1: नहीं।
0: टूर का मसला नहीं है शाह साहब, हमें शायद नसीम ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं, चूंकि ये भी इस पर बोलते रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो शायद आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम, संडे की दोपहर है, लोग आराम की नींद सो रहे हैं, कुछ उठ रहे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं, और आप रेडियो पर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, शुक्रिया।
0: शायद आप बात कर रहे थे हमारे थिंक टैंक सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब बता रहे थे, जो टैक्सी की बात करते हैं, चूंकि आपका भी उससे ताल्लुक है, इस पर भी आप अक्सर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ फोड़ते रहते हैं, तो ये जो नया कारोबारी सिस्टम आ गया, नई टैक्सी आ गई है, ग्रीन टैक्सी आ गई है, या जो भी नाम है इसका, इसके ज़रा इसके बारे में बताएं, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात।
2: जी राजा साहब, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 5-6 मिनट है तो
0: जी
2: मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि राजा साहब ये होना था, अब हम इसके ऊपर तकरीरें करें, डिबेटें करें, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है जो चीज हो जाए उसके ऊपर हम जो है ना तकरीरें करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अभी क्या कहते हैं, शाह साहब ने फरमाया कि 97% या मैं तो बल्कि 99% कहूंगा, 99.5% यानी कि 99.5% पाक्ट है इसके ऊपर फॉरनर जो हैं वो डेनमार्क में हो जाएं या यूरोप में हो जाएं, खासकर डेनमार्क की चलो बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डेनमार्क के जो फॉरनर्स हैं वो टैक्सियों के ऊपर हैं, कोपनहेगन से लेके पूरे यूलैंड तक, यूलैंड से लेके पूरे डेनमार्क तक। तो हम कोपनहेगन की बात करते हैं तो कोपनहेगन में भी 99% ही है, और उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 76% या 75% पाकिस्तानी है, बाकी दूसरे गैर मुल्की हैं। पहले पहले गैर मुल्की और जो पाकिस्तानी थे ये भी गैर मुल्की हैं, तो दूसरी जो कौमें थी जिसमें अरबी, तुर्की, कुर्द और जो दूसरे बहुत से वो भी थे इसके अंदर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए इसको, बहुत से लोग छोड़ गए हैं, बहुत से यंग लोग नहीं आ रहे, बहुत से लोग जो यंग अभी आए हैं जो नए नए आए हैं टैक्सी के अंदर, बिल्कुल यंग जो डेनिश बोलते हैं वो सारे टैक्सी चला रहे हैं, वो सारे उबर चला रहे हैं, उबर ब्लैक चला रहे हैं, सबको पता है, शाह साहब को भी पता है। इसमें इसमें आप ये नहीं है कि मैं किसी को कोई टीज कर रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसको आप समझें कि इसका मैं मतलब क्या ले रहा हूँ। तो उसको नए जो आए हैं वो ज्यादातर जो फिर और जो यंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाए मैं, क्योंकि पूरी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको पूरा पूरी समझ आ जाए। अब आ जाए एसएम ग्रीन, एसएम ग्रीन ने तो एक पैसा फेंका है, उन्होंने एक ये भी मंगवाई है जो हमारे अपने लोग, हमारे जो है जिनको पता कोई से बात का नहीं है, जो बहुत से इधर बाजार में चला रहे हैं टैक्सी और ये बातें करते हैं जी वो कुछ नहीं, ये हर बात को यही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी बात को, वो कुछ नहीं होता छोड़ो पड़ा। इन्होंने उबर आई थी तब भी यही कहा था, इतना इनको इन्फॉर्मेशन से दूर है हर चीज से। अगलों ने आपके यहाँ आके जबकि आप लोग को कि ये मार्केट थी, ये जो टैक्सी वॉनमन पाकिस्तानी थे सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे गैर मुल्की थे, इन्होंने ना कोई अपनी फाइनिंग बनाई मजबूत, यानी कि कोई यूनियन मजबूत जैसे डेनिश लोग पहले होते थे उन्होंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बाहर से कोई ना आ जाए। और ये बात मैं आपको 2013-14 की बता रहा हूँ, जब उबर ने पहली दफा पड़ाव रखा था डेनमार्क में, तो तब डेनिशों ने, डेनिश वॉनमैनों ने जो स्टैग थी उन्होंने, जबकि तब पक्षनी भी वॉनमैन जो थे डेनिशों से ऊपर ही थे तब भी, लेकिन फिर भी डेनिश वॉनमैन काफी थे, उन्होंने ये अपनी कोशिशों से के जरिए इसको यहाँ से भगा दिया और ये यहाँ से चले गया उबर। और उसके बाद यारी बात है 10 साल फिर आ गए, 10 साल बाद वो इसलिए आए कि उन ये डेनिश लोगों की, डेनिश ही पीछे जो सिस्टम है, डेनिश मैं यहाँ पर जिक्र नहीं भी करना चाहता, उन्होंने इसको तरीके के साथ ले आए जहां उनको देखा कि इसके ऊपर फॉरनरों का गलबा आ गया है और वो किसी करवट नहीं बदल रहा और बस एक ही जगह वो चल रहे हैं, ना उनकी कोई यूनियन है ना स्टैग यूनियन कुछ भी नहीं है, वो उनको पता था कोई चीज नहीं उन्होंने बनाई हुई, सिर्फ ये अपना अपना सोचते थे सारे ही, मैं खाली पक्षियों की बात नहीं कर रहा, इसमें दूसरे भी अब आ जाते हैं सबको ले लेता हूँ, अपना अपना सोचते थे, अपनी अपनी दिहाड़ी लगा के अपना अपना करके, तो कहते थे हमें क्या लगे, जहरी बात है बाहर से आके किसी ने वो कहते हैं कब्जा कर लिया है और वो उन्होंने उन्होंने वो करना था, और वो क्या कहते हैं वो आके वो बिजनेस कर रहे हैं, पहले उबर ने किया है अब एसएम आ गई है। 600 गाड़ियों का सवाल नहीं है कि 600 गाड़ियां आई हैं वो 1000 भी लेके आ सकते हैं, और ये भी नहीं है सवाल कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते, उनके पास पैसा है, उन्होंने रखा है इसके ऊपर 30,000 कर दिया, अब वो उन्होंने अपने पहले 26,000 से शुरू हुए हैं, 30,000 फर्स्ट उतना है, पहले ये छोड़ा गया मार्केट में क्योंकि मैं तो वहां गया हूँ और भी दोस्त किए हैं, मैंने वहां जाके पूरा वो पढ़ा है, बात की है और वाकई ऐसा ही है, 30,000 उन्होंने तनख्वाह देनी है और कस्टमर उन्होंने देना है उनके पास अभी है या नहीं है, आपने अपने 8 घंटे या 7.5 घंटे जो आपके हैं दिन के वो आपने लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको 30,000 मिलेगा, और उसके पास कुछ ज्यादा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो उसके कहते हैं डेनिश में ते ओनी, वो बात की बात है, अभी वो 30,000 दे रहे हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते ये कोई ऐसे नहीं है लोगों, वो जो बड़े बड़े जिन जो बड़े बड़े फंड है ये फंड होते हैं, ये बड़े बड़े मीर लोग होते हैं, ये इनके पास ये पैसा नहीं सिर्फ होता, वो कई बिजनेस शुरू किए थे, बिलियनियर होते हैं डॉलरों में, और ये यहाँ एशिया में, ये एशिया से आए हैं, एशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, बड़ा पैसा है इनके पास, उन्होंने इधर फेंका है यूरोप में, फेंका है पैसा यूरोप के कुछ मुल्कों में, और वो उन्होंने 100% कामयाब होना है, उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने डेनमार्क से क्या कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी डेनिश है वो तकरीबन सारी वो ली है, उन्होंने पूरा कानून पढ़ा है, पूरा उसका पहले सर्च किया है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा करके होमवर्क, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनकी अपनी है वो यहाँ पर लॉन्च की हैं, और 600 गाड़ियां या 800 गाड़ियां ये कोई कोई कोई भी है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो उनको पता है, उन्होंने ये एक मार्जिन रखा है कि हमने ये पाया तक मील तक 6 महीने में पहुंचाना है या साल तक। वो हर उस क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनी को शुरू करती है ना, उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है। और फिर वो, और ये भी कहा गया है, नहीं नहीं जी, ये ऊबर उसका मुकाबला है यार, जो भी है आप। और मैं आपको ये भी बता दूं, SM ग्रीन खुद ही वॉनमैन है, ऊबर वॉनमैन नहीं है। ऊबर में आप वॉनमैन खुद बनते हो, उनका ऐप है, ऐप और साफिया कंग फेमस खालवो हो गई, डैन हो गई, आमा हो गई, जो भी हो गई, वो एक लहदा चीज है, ऐप एक लहदा चीज है, ऐप सब लोगों ने अपना लिया हुआ बना, लेकिन उबर ये एक इंटरनेशनल ऐप है। वो उबर ऐप जो है जिसने बनाया था, जिस आदमी ने, उसने वो ऐप बनाने के कुछ अरसे बाद, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका में चलती थी वो टैक्सी उबर, उसने वो बेच दिया था, उसको फिर किसी बिजनेसमैन फंड को, बिजनेस जो जो जो रन, उन्होंने रनिंग बिजनेस ये खरीद लिया, ये उबर, उबर से खरीद लिया जिसने ऐप बनाया था। वो सिर्फ ऐप बनाता था, वो उसको चला

0: शायद जरा शाह अपना कहना, शायद ये गाड़ियां शहर में पार्क कहाँ होंगी, ट्रैफिक का निजाम कैसे चलेगा, इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कोपेनहेगन में?
1: जी मैं ये आपको बताता चलूं कि जब शाक्षा नेऊन थी 2018 तक, तो अब तब वो आपने ये बार का कहा इतनी ज्यादा गाड़ियों का, तब वो उनके कंट्रोल में थी, डैनिश उसके पीछे थे, डैनिश बड़े वॉर्नमन पीछे थे, स्टैक फ्रेनिंग थी वॉर्नमनों की, एक तो ये क्लियर हो गया। तब गाड़ियां आपकी होती थी 1500 से लेकर 1800 तक रोड के ऊपर, वो उसके मतलब था कि वो हर साल या दो साल या साल के बाद स्टैटिस्टिक देखते थे कि कितने कस्टमरों की हमें जरूरत है। और उस वक्त शाह साहब को पता था, जब वो चलाते थे तो वो एक ग्रीन रंग का एक बिलिंग नंबर होता था, वो आपको मिलता था और क्यू में आप लगते थे। और तब ये हमारे पक्ष से नहीं, हम लोग रोते थे यार सानू बिलिंग नहीं मिलता, वो पागल थे, क्यू में लगे थे, बिलिंग क्यों दें? बिलिंग इसलिए नहीं वो देते थे कि आपको जरूरत नहीं है, रोड के ऊपर गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। जब आप देखें इस टाइम अभी उसकी उसको ग्रीन को छोड़ दें, वो भी 10 15 20 गाड़ियां रोड पे अभी आई हैं अभी दो चार दिन पहले, और पहले उसको भी पीछे रखें, इस टाइम 4300 गड्डी है पार्टी कोपेनहेगन दे विच, डैन टैक्सी ऊबर और ड्राइवर और आमा और ये बोल्ट और ये सारा कुछ ये अपना खिपनों चक्स मिला के आपकी तकरीबन 4300 गड्डी है। और हर रोज मॉनिटरिंग होके आपकी 10 से 15 गाड़ियां रोड के ऊपर आ रही हैं क्योंकि वो ओपन कर दिया हुआ है। और उसमें ज्यादातर फिर मैं कहूंगा ज्यादातर पाकिस्तानी यंग जनरेशन है जो आ रही है। ये किस काम पे लगा दी है? आप यार डनवारक में पढ़े लिखे लोग हैं, ये यंग है, चलो शाह साहब की समझ आती है मुझे, चलो मुझे किसी और 60 साल के या 50 साल के बंदे की जो काम कर रहा है वो भी समझ आती है। मैं ये अब तंज नहीं कर रहा, मैं ये अपनी कौम को बता रहा हूँ कि यंग जो लोग हैं कि ये कोई फ्यूचर नहीं है अब आपका, देख लिया अब आपने, ये अब ग्रीन एसएमबी आ गई है, उसके नीचे लाके आप काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे, जो बड़े चला रहे हैं ठीक है उनके पास कोई वेल नहीं है, कोई पेंशनिस्ट चला रहा है कोई वेल नहीं है, लेकिन ये जो यंग हमारा तबका जो देखा है, शाह साहब ने भी देखा है, मुझे भी पता है, शाह साहब को भी पता है, आया है, मैं देख के हैरान हो गया, मैं यार ये डैनिश बोल रहा है, अच्छा भला लड़का है 24-25 साल का, फुल काम कर रहा है, क्या हो गया इनको? उसके बरक्स यहाँ पर आपके बंगाली हैं, उसके बरक्स आपके इंडियंस हैं, यहाँ पर सिख है कम्युनिटी, श्रीलंकन है, नो वे, कोई नहीं, जो पहले थे चंद, शाह साहब को पता है जो चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कुछ हैं कुछ चले गए हैं, और ये नया कोई नहीं आया। उस दूसरी जो ओवरसीज हैं जो दूसरे मुल्कों के, और उसमें बालकन के और मैकडोन योगोस्लाविन और मैकडोन ये बहुत ज्यादा थे चलाते, ये भी नए कोई नहीं आए, ये भी निकल गए हैं। लेकिन हमारे तो कहते हैं कि असी ना टैक्सी छटनी है ना असी पिज्जा छटना है, यार कोई आगे बढ़ो, कोई पाकिस्तान को भी कोई नाम हो, नाम ही कोई नहीं है आपका कहीं भी, डेनमार्क में तो फिलहाल कोई नाम नहीं है किसी का।
0: लेकिन इसमें ये भी शामिल करना था पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छटनी,
1: वो तो चलो एक पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छोड़नी, ये भी ठीक हो गया, चलो शाह साहब को मौका दें, उनको भी जाना होगा।
0: आपने शायद की बातें सुनी, उसने बड़े तफसील से बातें बताई, आप करते भी रहते हैं, आप क्या कहेंगे शाह साहब?
2: जी मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ शायद की बातें सुन के, कि मेरे बात अगर कोई यहाँ पे अपनी आवाम को कोई एजुकेट कर रहा है तो वो ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। देखें अब फ्यूचर क्या हो गया, हम फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर ये हो गया है कि जैसे ग्रीन टैक्सी ने ड्राइवर जिनको शौक है गाड़ी चलाने का उनको फिक्स पे कर दिया है। अब जब ये फिक्स पे हो गया तो इसमें ड्राइवर को वाकई ही बहुत ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, लेकिन जो जो फ्यूचर डार्क हुआ है वो हुआ है उनका, जिन्होंने वॉन में अपने आप को वॉनमैन समझते हैं लेकिन वो वॉनमैन नहीं है, उनको एक ट्रिलैल से एक इजाजतनामा मिला हुआ है, जैसे कि हमने 10,000 दफा बताया है कि जैसे आप इंश्योरेंस से ट्रिलैल से लेते हैं कि भाई मुझे नंबर प्लेट चाहिए, मैं आपके पास इंश्योर्ड हुआ, और जिस दिन आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो वो पुलिस को कह देते हैं, उसी वक्त आपकी गाड़ी को रोक कर वो नंबर प्लेट उतार लेते हैं, आपका ट्रिलैल से खत्म हो जाता है। ये जो नया उबर कानून बना था, शायद मैं आपके लिए भी आपको बात बता दूं कि मैं इस चीज के मुखालिफ था कि उबर यहाँ से बाहर जाए, मैं ये कहता था कि उबर को यहाँ रहना चाहिए, अब वो आ गए, ये अमीर आदमी है, इन्होंने सियासतदानों को भी खरीद लिया, इन्होंने मार्केट को खरीद लिया है, तो अब इनको रहने दें, इनकी मुखालफत ना करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वॉनमैनशिप जो है जो तो आपके पास जैसे लंदन में ब्लैक कैब चल रही

0: चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी हो, ड्राइवर ये चाहते हैं कि हमें ये सिक्योरिटी हो कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बीमारी के पैसे मिले, हमें पहले दिन से बीमारी के पैसे मिले। हम ये नहीं कि वोमेन कह के जी तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। ये जो नई कंपनी की जो शरायत है ये बहुत ही खुशानदार शरायत है ड्राइवर्स के लिए, लेकिन इसके अंदर लेस पे है तरह जो है ये डेनिश आइन के खिलाफ है। इसमें मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन जो उनका असूल है बाकी तरीके जो हैं उनके कि हम आपको देंगे क्या नाम है फायदा देंगे, आप बीमार हो जाते हैं, आप अनसेट हैं, आप छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, आपको छुट्टियों पे विद पे मिलेगी, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या दूसरी कंपनियां जो हैं या वो बंदे जो कहते हैं जी कि हम अभी तक वॉनमैन हैं, क्या वो अपनी अपनी अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकेंगे? क्या जो अवाम है गाहक जिसको हम कहते हैं वो सस्ती टैक्सी और अच्छी टैक्सी और एक ऐसी, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था कल भी पढ़ रहा था कि बेशुमार लोगों ने ये डेंचो ने लिखा है कि ये जो फॉरनर्स की टैक्सी थी, ये जो फॉरनर उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है फॉरनर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये रेप होते थे, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे, ये अब ये चीज खत्म हो जाएगी, अब हम ऐसी टैक्सी में बैठेंगे और ऐसी टैक्सी हम चाहते हैं डेनमार्क के अंदर के जो कंपनियां चलाएं और कंपनी जो है वो जवाबदेह होगी। तो पहले तो दूसरा सिस्टम चल रहा था तो इन्होंने सारा सिस्टम जो है उसको खत्म किया है। तो अब राजा साहब जो बातें हमने वार्निंग दी थी, एडवाइसल दी थी इन लोगों को, खुदारा मतलब प्रश्न ना बने, सामने आए और अपने जो है इस वॉरमैनशिप को इसको बचाएं। तो अब ये झटका जो है जुमे को लगने जा रहा है और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा डीएसबी और बड़ी बड़ी जो कंपनी है गवर्नमेंट की, ये तो अब ऐसी सस्ती गाड़ियां लेंगे जिसके अंदर यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर बैठे हुए हैं, एंस वाली ड्राइवर बैठे हुए, उनको पता है कि हमने पूरी तनख्वाह लेनी है, उनको इस बात की परवाह कि ये 100 करोड़ का टूर है या ये 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का टूर, इससे इसका उनसे लेना देना कोई नहीं। वो अपनी ड्यूटी करेंगे जैसे वो फर्मों में करते थे, फैक्ट्रियों में करते थे, 7 साढ़े 7 घंटे काम किया और उसके बाद खुदा हाफिज गाड़ी खड़ी की और अपने घर चले गए। और ये एक बहुत अच्छी खुशानदा बात है और इनके लिए, लेकिन ये उनके लिए जो जिन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी
1: लेकिन
0: हुई
1: शाह
0: हैं।
1: साहब आप ये सवाल ये पैदा होता है, चलें पहले लोगों ने गाड़ियां ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, बड़ी महंगी गाड़ियां ली, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो यहाँ सड़कों पर गाड़ियों का मौजूद नहीं है। शाह साहब अगर माहाना तनख्वाह होती है 30,000 के करीब या 40,000 डेनिश क्रोन के करीब होती है और शिफ्टों में काम होगा, कमीशन भी, ओवर टाइम भी हो सकता है, रात वीकेंड तैतील छुट्टियों में भी काम करने की जो अजाफी अदायगी मिल सकती है, शाह साहब अगर कंपनी इजतमाही मुआहदे यानी के तहत जो है ना वो मुलाजमी रखती हैं तो आम तौर पर तनख्वाह के साथ पेंशन, तनख्वाह के साथ छुट्टियां, बीमारी की सूरत में तनख्वाह, तरबियत यानी ट्रेनिंग, जदीद इलेक्ट्रिक टैक्सी की ट्रेनिंग, कंपनियों की तरफ से गाड़ी की देखभाल और इंश्योरेंस जैसी सहूलियात भी शामिल हो सकती हैं। शाह साहब आप ये जो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने या किसी से आपकी मुलाकात हुई, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो कोई भी इस कंपनी में गया तो आपकी इंफॉर्मेशन में है कि हमारे पाकिस्तानी भाई या हमारे गैर मुल्की भाई या जो हमारे लिसनर हैं ये कितने लोग जो है इस ब्रांच में जा चुके हैं और इसका मुआयदा कितना होगा, ये ना कि सुबह निकाल दिया जाए, आज छोड़ के जाते हैं दूसरी कंपनी में, फिर उनके लिए वापसी का रास्ता क्या होगा?
0: मैं कह रहा हूँ जी कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने आप को जो है इस कंपनी में चले गए हैं, उनको पहली फुर्सत में 3,000 ड्राइवर चाहिए थे और मेरा ख्याल में कि उनका जो है वो काफी, क्योंकि अगर वो 590 टैक्सी निकालते हैं तो उनको कम से कम 1600-1700 ड्राइवर जो होते हैं दिन रात के लिए उनको चाहिए थे और वो उन्होंने पूरे कर लिए, उससे ज्यादा ड्राइवर वो रख रहे हैं ताकि वीकेंड पे जो लोग छुट्टियां करेंगे, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमने वीकेंड में भी काम करना है, नहीं, आपने 5-6 दिन जो मुकर्रर है 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, और इसी के असूल पे जो वो काम कर रहे हैं तो उनको जो तनख्वाह मिल रही है फिर उसके ऊपर जो बोनस मिल रहा है ये उनके लिए

0: अच्छा फिर उनको हर किस्म की श्योरिटी है। सबसे बड़ी श्योरिटी उनके लिए यह है कि उनकी अपनी कैब नहीं है, उनको यह मसला नहीं है कि मैं वर्कशॉप में गया तो वर्कशॉप, वो वर्कशॉप तो कंपनी की अपनी है, उन्होंने अपनी गाड़ियां ठीक करनी है, उसको कहना है कि भाई ठीक है तेरी गाड़ी खराब हो गई है या कुछ हो गया तो उसको तो पे मिलेगी। अब मसला जो खड़ा हो गया है, जो दोबारे बर्लिन खड़ी हो गई है, दोबारे चीन खड़ी हो गई है, वो ये हो गई है कि जो हमारे भाई वॉनमैन बने हुए, अपने आप को वॉनमैन कहते हैं, सॉरी टू से मैं माफी चाहता हूं माजत के साथ, उनका क्या बनेगा जिन्होंने इतनी इतनी महंगी गाड़ियां ली हुई है, जिनके अपने नंबर हैं, अब वो क्या करेंगे? क्या वो इस गर्मी के अंदर, ये जो अगस्त के आ रहा है आगे से यूल फेयर ये आएगी उसके अंदर, फिर जनवरी फरवरी आएगी, क्या उसके अंदर वो इतना पैसा? मैं खुद वॉनमैन रहा हूं, मैं खुद सेल्स कैब चलाता रहा हूं, मुझे पता है कि ये जो सज्जे खब्बे की मारते हैं ना वॉनमैन, इसके अंदर कितना मुश्किल हो जाता है। आपको ड्राइवर नहीं मिल रहे, आप ड्राइवर लगा नहीं सकते। मैंने कितने लोगों के साथ बात की है कि यार आप बेकार दो, उन्होंने कहा शाहजी साहब जापाल आपकी ऐसी, और इवन टर्केज जो है वो भी चले गए, बहुत ज्यादा फॉरनर जो थे वो अब इसमें जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये एक फिक्स नौकरी है, ये वैसी नौकरी है जैसे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 5 दिन काम करना है, आपको फिक्स तनख्वाह मिल रही है, आपने कोई सड़कों पे से सवारी नहीं उठानी, आपने रेडियो टूर उठाना है, अगर सड़क से कोई मिल गया तो उसका आपको बोनस मिलेगा, बाकी जो गवर्नमेंट है उस, अगर कंपनी आपको दिन में 10 टूर देती है या 5 टूर देती है तो उसका आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपको तो अपनी तनख्वाह मिल रही है, वो आपको मिल रही है, तो ये चीजें ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ ये हो गया कि अब जो वॉनमैनशिप थी वो खतरे में हो गई है, और जो पुराना कानून था वो हमारे लोगों ने खुद खत्म कराया, और इस बात पे जी कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम डैनिश में बहुत ज्यादा माहिर हैं, और अब जो चीजें हैं वो सामने आ गई है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, ये जो फलके पेंशन वाले हैं उनके लिए क्या होगा? क्या वो 20-25-30 घंटे काम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे या छुट्टियों में काम करेंगे, या वो 37 घंटे भी फुल टाइम भी काम कर सकते हैं? ये कोई पता लगा आपको?
0: जी बिल्कुल, वो जो फलके पेंशन वाले हैं वो काम कर सकते हैं, और फोर्सेस पेंशन वाले जो हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक हदूद में रह के कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, और आपके कितने घंटे जो हैं अब, क्योंकि अगर आप काम करेंगे टैक्सीज के अंदर तो आपको 3 घंटे या 4 घंटे की वो चेकअप होगा कि भाई ये कितने जा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होगा ऑटोमेटिकली, ये नई कंपनी जो है ये कितने पैसे देती है बंदों को वीकेंड में चलने के लिए, या दूसरे कितने देते हैं, लेकिन आप काम कर सकते हैं। अगर आप फलके पेंशनिस्ट हैं तो फिर वो आपको, अगर आप फुल टाइम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो आपको ही सिर्फ ग्रूम ग्लोब जो होता है ना वो आपको देंगे, आपको दूसरे जितने डिलैक्स वगैरह मिलते हैं वो आपके खत्म कर देंगे, और आपको कहेंगे ठीक है कि आप जाएं। अगर आपको 5,000 या 6,000 या 7,000 मिल रही है वो, फिर इसके साथ ये होगा कि जो आपको जो फोर्सेस पेंशनर्स या जो पेंशनर हैं इनको जो बॉडी यूल से मिलता है, यानी कि जो पैसे वो देते हैं कि भाई आपका किराया बहुत ज्यादा है ये वो खत्म हो जाएगा इससे, लेकिन अगर आप सिर्फ वीकेंड
1: शाह
0: में
1: साहब, ये
0: चंद
1: तो
0: घंटे
1: नेचुरली
0: चलाएं।
1: बात है शाह साहब, अगर बात बिलफर्ज में मिसाल के तौर पर चले, आपका नाम ले रहे हैं, अगर आप फलके पेंशन है, अगर आप अब गाड़ी चलाते हैं तो कितने घंटे चला सकते हैं जो आपकी पेंशन पर, आपके जो छिलेगे इस पर कोई फर्क ना पड़े?
0: देखिए अगर सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मैंने वीकेंड में चलानी है, पहले तो मुझे काम कोई नहीं देगा अगर मैं फुल टाइम चलाता हूँ, और दूसरा यह है कि जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं इसके मुताबिक यह है कि आपको चेक एंड बैलेंस जो है ये बहुत जबरदस्त इन्होंने कर दिया है, ये देख रहे हैं, इससे मुझे जो इजाजत होगी अगर मैं वीकेंड में काम करता हूँ तो मैं पूरे महीने के अंदर जो है वो 7,000 से ऊपर का करोन जो है वो नहीं कमा सकता। अगर मैं 7,000 से ऊपर कमाऊंगा तो वो उसका मतलब ये हो गया कि वो मेरी जो सिर्फ ग्रूम ग्लोब है वो देंगे, बाकी में कटौती होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं फुल टाइम काम करता हूँ तो फिर मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि फिर आपकी जो घर की इनकम है वो स्टीयर कर जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसके अंदर ये होगा कि आपको दो जगह टैक्स देना पड़ेगा, एक आपकी इनकम पे टैक्स देंगे, एक आप इनकम टैक्स देंगे जो आप पेंशन में कटौती करा रहे हैं, फिर दूसरा वो देखेंगे कि आपके घर के जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, घर में साथ रह रहे हैं, उसकी हाउस होल्डिंग जो है उसकी इनकम कितनी है। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और इससे हमारे लोग जो है वो नुकसान में हो जाते हैं। अब डेनिशों के लिए ये है कि डेनिश जो है वो हमारी तरह झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं ठीक है भी वो अवैध फसाए, वो कहते हैं जी कि ठीक है वो तो हमें उनके उनको तो परवाह नहीं कि हम शादीशुदा करके साथ रहते हैं या नहीं रहते, वो लादा लादा भी हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली इस गवर्नमेंट ने जो इशारा किया था 2022 के अंदर और उसके फॉर्म है जो कानून इन्होंने बनाया था, वो खसूसी तौर पर ये देख रहे हैं कि ये जो फॉरनर्स हैं ये ज्यादातर, क्योंकि इसमें जो हम बाद में इस पर डिबेट करेंगे जरूर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि लोग जो हैं वो डेनिश तलाक ले लेते हैं लेकिन लोग मियां बीवी इकट्ठे रहते हैं और ये साबित करते हैं अपने संपर्क में अपने लोगों को, ये कहते हैं हमारा ये जुर्म है और इसमें वो काफी तहकीक कर रहे हैं और काफी लोगों को जुर्माना भी हुआ है और अब इसके ऊपर वो कितनी सख्ती कर रहे करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि
1: चलें शाह साहब इतनी गाड़ियां और आ जाएंगी 600 के करीब आ जाएंगी तो शाह साहब पार्किंग कहाँ होगी? शहर तो उतना ही है, कोपेनहेगन से चलेंगी, शहर तो उतना ही है
0: जी। ये अब कोपेनहेगन कम्यून का मसला है कि ये अब पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसको ये सोचना पड़ जाएगा कि मैंने जो पहले अपना टिल्डाल से, मैं पवेलियन नहीं कहूंगा, जो पहले मैंने टिल्डाल से इजाजतनामे मैंने दिए थे, वो मैंने दिए थे कि पूरे डेनमार्क के अंदर चले, वो सारे के सारे कोपेनहेगन में ही रह गए और बड़े शहरों में रह गए, अब छोटे जगह में नहीं। तो अब ये जो नई गाड़ी आ रही है ये भी, तो अब आप ये खुद अंदाजा लगा रहे कि जब 3500 से लेके 5000 गाड़ी जो है वो कोपेनहेगन के अंदर घूमेगी, तो इस टैक्सी के अंदर अब काम उसको मिलेगा जो सबसे सस्ती होगी। अब यहाँ पे ये मुकाबलाबाजी होगी कि हमारा मीटर कितने पे चलता है, हम कितनी सस्ती देते हैं, हम फास्ट टूर देखे, ये जो फास्ट टूर वाला काम इन्होंने किया है ये डेनमार्क के अंदर जो है ये इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि एक ड्राइवर अगर ये जो अभी मैं रॉस किल्डे का पढ़ रहा था और मैंने आपको भेजा भी है वो कटिंग मैंने आपको भेजी भी है ताकि कोई कहे कि शाह साहब झूठ बोल रहे हैं तो वो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। रॉस किल्डे से लुफ्टहावन का 530 या 540 करोड़ का वो टूर लेके गया है और अगर वो रश आवर्स में जा रहा है तो वो बेचारा जो है वो थका हुआ है, 40-50 मिनट का टूर है और वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो वोन मैन अगर वो खुद भी वोन मैन है तो वो अपने अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगा, वो किस तरीके से गाड़ी के अखराजात जो है वो एक घंटे के लिए अगर वो 500-600 करोड़ कमा रहा है तो उसको तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि जब वो इस सारी चीज को डील करेगा इंश्योरेंसों में गाड़ी के खर्चे में सारा कुछ, तो उसको क्या मिला, उसको 80 या 90 करोड़ से जायद या हद कर दें आप तो 100 करोड़ उसको इस पूरे टूर का जेब में आएगा, तो उसको क्या फायदा हुआ एक घंटे में 100 करोड़, इससे अच्छा है वो जाके तो
1: एक बहुत बड़ा खेल होता है कारोबारी खेल से कह लें, जाहिर है रोजगार भी लोगों को मिलता है, तो शाह साहब इंश्योरेंस इन्वॉल्व होगी, रोड टैक्स इन्वॉल्व हो गया, अब तो फिक्स चीज़ें आ गई हैं, इंश्योरेंस भी फिक्स हो गई है, हर कंपनी इतनी कंपनियां आ गई इंश्योरेंस वाली कि वो गिनी नहीं जाती, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं जहाँ सहूलियात हैं उस तरफ जाना चाहते हैं, तो शाह साहब आप कोई मुस्तकिल मिजाजी वाली बात नज़र आती है?
0: जी ये जब तक मुश्किल मजाजी वाली बात तो उस वक्त होगी जब हमारे जो काउंसलर हजरात हैं ये इस मसाइल को संजीदगी से देखें और वो उठाएं इसको कम्यूनों के अंदर, के एग्जाम्पल ईसा में कितने टैक्सी वोमैन या टैक्सी ड्राइवर रहते हैं, टास्टो में कितने हैं, एल्बर्सोन में कितने हैं, कोपेनहेगन में कितने हैं, तो उनके लिए मसला बन जाएगा कि भाई लोग कैसे क्या करें। अब मैं आपको ये यकीन से ये बात कहता हूं कि ये जो नई कंपनी आई है अभी तक ये कानून जरूर था कि आप 33,000 से लेके 35,000 तक फर्स्ट प्राइस पे आप ड्राइवर को रख सकते हैं, फिर उनको उनकी इंश्योरेंस है, हर चीज उनको आपने देनी है। लेकिन 29,000 जो है ये, और फिर उसको हर किस्म की सहूलत देनी ड्राइवर को, ये वोमैन के वोमैनशिप को खत्म कर देगी। और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, एग्जाम्पल अब बॉल्ट है यहाँ पे वो उबर है, तो ये क्या करेंगी, ये भी इसी तरीके से जब लोग अपने नंबर वापस करना शुरू कर देंगे, तंग आ जाएंगे, उनकी गाड़ियां बिक नहीं सकती तो वो गाड़ियां खड़ी कर देंगे, उनको नुकसान होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे कि कंपनियां उनसे हर एक चीज ले लेंगी सस्ते दामों, और फिर उनके अंदर अपने ड्राइवर जो है, जिस तरह इन्होंने एंड सेट किया, इन्होंने तनखादार बंदे मुलाजिम रखे हैं, वो भी उनको कहेंगे कि अब आप हमारे पास काम करें, आप हमारे लिए पैसा कमाएं और हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, ये आपने काम करना है। तो अब ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये सामने आ गई है। तो राजा साहब, इसमें जो हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स है, बड़े बड़े
1: मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे काम होंगे लेन देन वाले,
0: बिल्कुल जी, ये सब कुछ आप अब अखबारें भरी हुई हैं कि जो लोग फेरिये पे गए हैं वो कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे, कैश पैसा इस्तेमाल कर रहे, इनको सात किस्म की आप इंफॉर्मेशन।
1: शाह साहब देखे ना, इस पर नजर रखनी चाहिए, बार बार आप काउंसलर का जिक्र करते हैं, डेफिनेट इसके लिए काउंसलर ने अपनी अपनी कमूनों में पहले सफबंदी करनी थी, पार्किंग ये वो दूसरा तीसरा। शाह साहब हर पार्किंग अब पैसे से होती है, फ्री पार्किंग तो कहीं भी आपको मिलती नहीं कि आप करें, कुछ जगहों पर है 1.5 घंटा 2 घंटे 15 मिनट, इतनी ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम इतनी पार्किंग आपको फ्री मिलती है। दूर दराज इलाकों में रहते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका विल्ला है आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सड़क पर तो आपने गाड़ी खड़ी करनी है कहीं ना कहीं।
0: देखिए जी, पार्किंग का पहले सबसे पहले ये है कि आप इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ये मैं गवर्नमेंट को और काउंसलर्स को कह रहा हूं कि जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, आपका प्राइवेट विला है तो उसके अंदर तो आपकी पार्किंग जो है वो ग्रातिस है, क्योंकि वो तो आपके अपनी है, उसके राइट्स दूसरे हैं। और जो अपार्टमेंट ले रहा है, अगर वो कहीं सड़क पे या किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर रहा है तो वहां पे क्या जी उसको जुर्माना लग जाता है। अगर उसका कोई गेस्ट आ जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसको नहीं पता, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे फ्री है गेस्ट पार्किंग है या क्या, वहां पे वो जुर्माना लगा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है।
1: शाह साहब और भी हमें शिकायत मिलती है, हमसे लोग बात करते हैं सर, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमसे बात करते हैं। शाह साहब जब आप शहर में घूमते हैं, एक दिन हमने भी सर्वे किया, आपको पता है कि ये जो डील चीज वीजा कारोबारी गाड़ियां उनकी पार्किंग होती है ये हर वक्त आपको खाली मिलती है, रात को बाहर निकले आपके घरों के आगे पीछे जहां इलेक्ट्रिक पार्किंग है ये पार्किंग हमेशा खाली पड़ी होती है, लेकिन आप वही का जो काम वाली गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहां खड़ी नहीं कर सकते, वो भी काम वाली भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं वो अलग-अलग सिस्टम बना हुआ है। तो शाह साहब एक आपने रोड टैक्स भी देना है, उसके बाद आपने पार्किंग भी करनी है, फिर आपने वो पीस की जो लिखा होता है पार्किंग के पैसे भी डालने हैं। तो शाह साहब इसकी वजात जो आप सिटी काउंसलर जो बैठे होते हैं कमूनों में सबसे जिम्मेदार लोग तो ये होते हैं, पावर तो इनके पास होती है कमेटियों में। तो शाह साहब ये मुझे एक बड़ा मनज़म जो है वो मनज़म जो कहते हैं वो स्पिल नज़र आती है, गैम नज़र आती है, स्कक नज़र आता है, आप क्या कहेंगे?
0: ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहां पे खड़े होके अपने कम्यून के अंदर खड़े होके ये फौसले दे सकते हैं, वहां पे ये फौसले दे के कह सकते हैं कि देखे यहाँ पे पार्किंग के अंदर नजायज पैसे लिए जा रहे हैं, जब लोग यहाँ के 38 से 40% बल्कि 90% हर बंदा जो डेनमार्क के अंदर रहता है, खसूसी तौर पर कोपेनहेगन वेस्ट राइन में रहता है, ये 90% से ऊपर टैक्स देता है। वो टैक्स इसलिए कि इसके अंदर जो वो टैक्स देता है पर्सनल टैक्स देता है, फिर उसके अंदर जो चीजें बाय करता है मम्स वगैरह देता है, ये जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा चली जाती है, ये तो 90 से भी ऊपर चले जाते हैं जो टैक्सेस हम पे करते हैं। तो ये हमें क्या दे रहे हैं? मुझे याद पड़ता है कि 80s में एक एक्सपर्टीज टैक्स का मेरे साथ बैठा था, तो वो मुझे कहने लगा कि तुम लंबे टूर लेके जाते हो या छोटे टूर, तुम किस पे राजी हो, किस पे खुश हो? मैंने कहा यार जितने ज्यादा मुझे पैसे बने मैं उस पे खुश हूँ। तो उसने हंस के कहा, उसने कहा देखो तुम्हारी टैक्स कार्ड तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ, वो तो हर बंदा जो काम करता है उसके पास है। तो उसने कहा जो तुम्हारी फ्रॉड लिखी हुई है ना 5,000 या 4,000 या 2,000, वो जो तुम्हारी मंथली लिखी हुई है ना, उससे 1000 करोड़ ऊपर का लो, ये तुम्हारे तुम्हारी असल बचत है, इसमें तुमने गुजारा करना है, बाकी तो सारा ये मम्स और टैक्स में तुमसे छीन के ले जाएंगे। तो मैंने उस वक्त यंग था तो मैंने कहा ये क्या है, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ तो मैं जब ये पेपरों को ऊपर लिख लिख के पेंसिल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं उस बंदे को याद करके कहता हूँ कि वो कितना अकलमंद आदमी था कि आज से 40-45 साल पहले उसने मुझे ये वार्निंग दे दी थी। और ये चीज डेनमार्क में हो रही है। अब डेनमार्क क्या कहता है कि हमारी ऑफिशियल जो है दुनिया को ये बताता है कि हमारा जो कम से कम बंदा है वो 3,72,000 करोड़ से कम कमाता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ये देखें ये जो आ रही है तो ये कंपनियां जो है ये तो 2,40,000 करोड़ सालाना है, तो फिर इनकी इसके ऊपर कौन बात करेगा, इसके ऊपर काउंसलर ने बात
1: करनी है ना। पहले पार्किंग की तरफ आते हैं, ये चूंकि बुनियादी सहूलियात हैं, जिसने भी गाड़ी रखी होती है, जिसने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अब रखेगी, अब तो चंद सालों में जो है बिल्कुल हर गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वाला तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, शहर की बात कर रहा हूँ। तो शाह साहब इसकी कोई मनसूबाबंदी की जाती है, अब देखें 600 गाड़ी आएगी, किसी भी कंपनी की गाड़ी है, दूसरी गाड़ियां भी हैं, आपने पार्क भी करनी है, जो लोकल लोग बिल्डिंगों में रहते हैं उन्होंने भी गाड़ियां पार्क करनी है, पार्किंग की कोई सफाई भी नहीं करता। तो शाह साहब आने वाला जब हम मुस्तकबिल देखते हैं, बात एनवायरनमेंट की करते हैं, तो पार्किंग प्लेसेस तो सबसे ज्यादा गंदी होती हैं।
0: नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। जैसे मैंने 2017 में बात शुरू की थी कि ये ऊपर आ जाएगी और ये छा जाएंगे, इनको रहने दें, अपना डिफेंस करें, मैं इसी तरह ये कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही हैं और ये बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। अगर आप आज की अखबारों में इंटरनेशनल न्यूज में पढ़ें तो जो टेस्ला का जो मालिक है उसको कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और उसको सिर्फ इसीलिए कि अब लोग जो है वो खरीद नहीं रहे, बल्कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर उसने उसको कवर करने के लिए अपने अच्छा की जो कीमत है अपने उसको कम किया ताकि लोग उसको खरीदे, और वो मेरा जो नुकसान मुझे हुआ है पहले 3 माह के अंदर उसको कवर किया जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसें कोपेनहेगन में चलाते रहे हैं और चला रहे हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि उनको कितनी प्रॉब्लम था। ये चीजें जो है अगर जाती है, मैंने खुद अपने घर में अपने बेटों की गाड़ियों को देखा है कि नुक्स के लिए 7-7 महीने लग गए, उनको पता ही नहीं लगा, उसकी जगह उन्होंने फिर नई गाड़ियां दी है। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आम आदमी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। लोग जो है अगर खुदा ना खासा कल को ये जो कंप्यूटर का ये जो चल रहा सिस्टम अगर ये एक दूसरे के कंप्यूटराइज सिस्टम को बंद कर दे, कुछ चीज कर दे, सैटेलाइट्स को बंद कर दे, कोई ऐसी टेररिज्म सिस्टम हो जाता है,
1: चलती रहेंगी। लेकिन फैसले जब हो जाते हैं, जब अक्सरियत, तो आपको पता है हम जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जब जमहूरियत
0: खत्म हो गया जी, जमहूरी मुल्क खत्म हो गया, ये जमहूरी मुल्क होता तो ये पार्किंग का जो था सिलसिला ये लोगों के लिए आसान करता, ये बूढ़ों के लिए आसान करता। 8,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ हूसला है कोपेनहेगन के अंदर, उसकी पार्किंग का जो है कोपेनहेगन में मेरे पास इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, आपने भी कुछ बताया था, कुछ लोगों ने बताया कि एक एक लाइब्रेरी के अंदर जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो 3500 से लेके 4000 और जो महंगा एरिया वहां पे 4000 से भी ऊपर जो है एक पार्किंग प्लस का वो ले रहे हैं। अगर एक घर में 2 गाड़ियां हैं तो वो 2 पार्किंग प्लस अगर ले रहे हैं तो वो तो 5-6 हजार को उधर दे रहे हैं। तो ये
1: एक सवाल पैदा होता है शाह साहब, आप पार्किंग में खड़े होते हैं, आपको पार्किंग में क्या सहूलियत मिलती है, लाइसेंस आपने लिया उसके बावजूद आप पैसे देते हैं
0: जी? तो ये नहीं होना चाहिए, पार्किंग फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्किंग फ्री इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तो आपकी जो आइंडम है जिसके अंदर आपने लाइक किया हुआ है या आपने घर फ्लैट खरीदा हुआ है, एक तो वो डबल कमाई कर रहे हैं,
1: और उसके साथ बात की तरफ मैं आता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं शाह साहब। एक बंदा एक घर में, 4 बंदे फलक हैं 2 बंदे फलक हैं, एक घर में 4 गाड़ियां उसी एड्रेस पे या 3 गाड़ियां, तो शाह साहब पार्किंग का प्रॉब्लम तो आएगा, हमें भी तो सोचना चाहिए।
0: नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन गाड़ियों को बजाय लीजिंग करने के गाड़ियों को ये करने के, गाड़ियों की प्राइसेस नीचे करके गाड़ियों को बाय करने के लिए अगर रखे तो किसी आदमी के पास 40-50 हजार करोड़ इतना कैश नहीं होता कि वो जाके ब्रांड न्यू गाड़ी जो है उसकी उड़बचनिंग जो कर सके। अब लीजिंग का जो मसला है कि आप 40-50 हजार करोड़ लीज कर देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और उसकी 3-4 हजार करोड़ जो है वो मंथली आप देते हैं, और बाद लीजिंग इतनी सस्ती है कि आप उसके अंदर 20 हजार करोड़ देते हैं तो आप गाड़ी लीज कर लेते हैं, तो लोग जो है वो उसको लीजिंग गाड़ियों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो पार्किंग की प्रॉब्लम इसलिए हो गई है कि पार्किंग जो है लोग देखते हैं कि किस जगह पे पार्किंग जो है वो फ्री है तो वो फ्री पार्किंग वाली स्ट्रीट पे जाके अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, और जो पेमेंट करते हैं जिन्होंने गाड़ियां रखी हैं आप उनके पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़े कर सकते क्योंकि अब तो आपके फ्लैट का नंबर लिखा होता है उस पार्किंग में। मैं अगले दिन बेलारूस गया था तो वहां मैंने एक टर्किश के पास जाना था तो वहां पे वो बादशाह नीचे आया, उसने कहा कि गर्दज तुम यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, तुम्हें बाहर खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ हर लाली के लिए एक एक पार्किंग प्लेस है और वो उसके अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता, नहीं तो फौरन जुर्माना लग जाएगा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतने दूर से मैं चल के पैदल आ पाऊंगा, तो ये जो मसाइल है ये किन्होंने किए,
1: आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो ज़हनी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल जी, और ये कम्यून के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं ये इनकी इनकी वजह से है, ये इनकी नेकलेस है, ये लोग इस चीजों पे बात नहीं करते कि हमारे लोगों की डिमांड क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा फोटो सेशन हो रहा है, हम कहाँ अपनी तस्वीर लगाए, हमें कौन बुला रहा है, किस पार्टी में हमें नहीं बुलाया गया, किस पार्टी में हम जाएंगे, किस शादी ब्याह, बस ये इनका चीज रह गई है। ये मैं उर्फे हमें ये कहूंगा
1: तो शाह साहब इसका मतलब है कि वोटर को जो वोट देने वाला उसको अपनी पावर का पता ही नहीं है,
0: पता ही नहीं है। ये मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तानी सियासतदान है, प्योर पाकिस्तानी, ये डेनिश सियासतदान नहीं है क्योंकि डेनिश सियासतदान जो है वो किस कहीं भी तख्ती नहीं लगाता कि ये मैंने ये काम करवाया इस पे मेरा नाम आया, नहीं वो कहता है ये कम्यून ने कराया, गवर्नमेंट ने कराया और जो वहां का बॉम मिनिस्टर होता है उसका उसका भी नाम नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे सारे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि डेनिस जो है वो जब किसी भी असेंबली में हो, बेशक वो कम्यून की असेंबली में बैठे हो या पार्लियामेंट में, तो वो तैयारी करके आते हैं, उनको पता होता है कि हमने किस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है। तो जब आप सारा दिन अपने कारोबार में रहेंगे, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप थके हुए जाएंगे, फिर आपने अपनी बीवी बच्चों को संभालना, फिर आपने किसी शादी ब्याह पे जाना, तो आप वो कहते हैं जी आपने
1: क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब देखे ना कि जो तंजीमें लगातार काम करती हैं, जिनका मतलब अरसा दराज से अपना काम करती हैं, वो बात तो हमें समझ आती है। शाह साहब ये आमों का फेस्टिवल जो है वो इसका बिल्कुल जो है वो रश आया हुआ है, जो सलमा हाउस जो है फुल जा रहा है, लेकिन डी पैक जो एक तंजीम है गालबन पाकिस्तानी डेनिश बिजनेस अफेयर काउंसिल है, ये पिछले 7-8 साल से ये करा रहे हैं, देखिए मुसलसल करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं। इनका प्रोग्राम हुआ बहुत कम या प्रोग्राम था कसीर तादाद में, मैं नहीं समझता कि इतने लोग कभी किसी प्रोग्राम में गए हों, लेकिन शाह साहब वो तो तसलसल से करा रहे हैं। उनका कहा था हमें कोई जो हमें जिस कीमत पर मिलते हैं हम आगे बेच देते हैं, आगे लोगों को सर्व कर देते हैं, मेहनत होती है, अखराज डेफिनेट अखराज तो निकालते होंगे जो समझ आती है, लेकिन शाह साहब हर रोज़ मैंगो फेस्टिवल हो रहा है और ये इतना ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है, तो शाह साहब अगर कभी हमने अपने मसाइल की भी एडवर्टाइजमेंट की है कभी?
0: नहीं जी हमने कभी नहीं की, और ये जो है ये खुद मसाइल में गिर चुके हुए हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि टैक्स की और जो है वो अपना मम्स वगैरह की उनकी नजर पड़ चुकी है इनके ऊपर, और बहुत ज्यादा पाइपलाइन में है और बहुत ज्यादा लोगों ने क्रय किया कि वो 4-4 हजार 5-5 हजार करोड़ जो है वो देते हैं बकायदा एक टेबल का, तो ये चीजें जो है बाहर निकल चुकी हैं, लोगों के टेलीफोन टेप होते हैं तो हर चीज, लेकिन ये आस्ता आस्ता ये आप याद चीज याद रखें, ये वाइकिंग है, ये बैरी करजाक है, ये बड़े बड़े शिपों को लूटते हैं, ये छोटी छोटी डैने छोटी छोटी चोरी नहीं करते, तो ये जब पकड़ते हैं तो ये छोटे छोटे चोरों को इंतजार करते हैं कि इनका माल उतना हो जाए जब ये एक बड़े शिप के बराबर तो फिर हम इनके इनके ऊपर कब्जा करेंगे। तो लिहाजा मैं यहीं पे बात खत्म करूंगा कि हम लोगों ने अपने हाथ काटे हैं, अपने पांव काटे हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। और अगर ये चीजें जो है रजिस्टर्ड होती हैं, ये चीजें जो है हम ऑफिशियल तरीके से करते हैं और अपने आप को भी खुश रखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो चीज होने जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। और किन किन के ऊपर होंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सोर्सेज हैं, मैं चिड़िया तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी चिड़िया ये है, क्योंकि मैं दैनिक सियासत में हूँ और जो मैं स्टडी करता हूँ, और इस वक्त जो पुराने सियासतदान जिनसे गुफ्तगू होती है डेंशो से, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त 800-900 से जायद टैक्स केसेस जो है वो इन पाइपलाइन, जो बड़े किस्म के टैक्सेस हैं, और ये कब खुलेंगे, कब आएगा, ये जो है वो
1: ये बात हो रही है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आखिर में आप क्या कहेंगे कि यहाँ के रहने वाले शहरियों को अपनी अपनी कम्यूनों में बैठकर क्या करना चाहिए?
0: ये इनको जब तक ये आवाम से रابطہ नहीं रखेंगे, ये आवाम से ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जनरल तकलीफात क्या हैं, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसके ऊपर आइन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां पे आप जाकर बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक देखिए हमने कितनी दफा कहा है कि ये लोग कम्यूनों में ये जाके कानून बनाए, कभी किसी ने आके कहा काउंसलर ने कि जी हमने इसके ऊपर बात की है? नहीं। ये चीजें जो है,
1: कभी आपको दावत मिली है किसी काउंसलर ने कहा होगा जी आज आए हमारी डिबेट हो रही है आप आए हमारे मेहमान बने?
0: नहीं, वो सिर्फ उनको बुलाते हैं कि जो उनके आगे बार बार करे ताड़िए करे। वो एक शायर था तो वो शेर शायरी कर रहा था, तो बंदे वाह वाह वाह वाह कर रहे थे, तो मैंने एक को पकड़ के पूछा, मैंने कहा बंदे ने पुत्र इतनी वाह वाह कर रहे, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा जी बड़ा अच्छा गया। मैंने कहा क्या कह रहा था? उसका सब्जेक्ट गया था, उसका वो बोल कर रहा था, तो आगे से वो मेरा मुंह देखने लगा, हाथ चढ़ के चला गया। तो ये चीजें हैं कि ये वाह वाह करने वाले लोग हैं, हमें बुलाएंगे तो हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो उनको बताएंगे तुम्हारे लिए बेहतरी है भाई, ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ है, ये जो 100-400 के करीब कानून बने हुए हैं ये आइन के खिलाफ है, या आप इसके ऊपर बात करें, और वो कर सकते हैं, बेहतरी उनकी है, लेकिन वो क्या करेंगे?
1: तो शाह साहब ये जमहूरी मुल्क का आखिरी सवाल है, जवाब इसका दें, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ तो सारे काम जमहूरियत से होते हैं, जहाँ जमहूरियत जिस तरफ ज्यादा होगी वही कानून बनेगा, वही बंदा जीतेगा। तो शाह साहब पहले सबसे पहले तो आवाम को जमहूरी बनना चाहिए।
0: देखिए जी ना, हम लोग जमहूरियत को समझते नहीं है, हमें पहले यही नहीं पता कि जमहूरियत आई कहाँ से है। हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी जो है ये यूरोप से आई है, ये इनकी है, हालांकि इनका कानून पढ़े तो ये कहते हैं डेमोक्रेसी हम लेके आए थे कैसकस दुनिया से, ओल्ड टर्की से हम लेके आए थे, वहां किनकी थी, वहां पे इस्लाम था। अगर आप इनसे पूछे जी क्या है पाकिस्तान में, सुने जजों से सुने दूसरों से, वो कहते हैं जी ये जब कैद खाने हैं ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज रखे। इस्लाम को देखे, इस्लामी हिस्ट्री को देखे तो कैदियों के साथ जो हौसले सलूक किया जाता था वो इतने जालिम नहीं थे जितने आज के लोग जालिम हैं। तो ये चीजें जो है डेमोक्रेसी लाने वाले मुसलमान थे।
1: ये सवाल आ गया हमारी तरफ शाह साहब, चूंकि हम जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत को देखते हैं जहाँ जहाँ दुनिया में चल रही होती है, हमारे साथ रिलेटेड होते हैं कि यहाँ की जमहूरियत। शाह साहब आजकल जो जमहूरियत ने कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, सब पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, बसें भी दी जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों का भी ऐलान हो रहा है, मोटरवेज का भी ऐलान हो रहा है, तो शाह साहब ये चीज़ें तो वक्त से पहले भी हो सकती, चले देर आए दुरुस्त आए, तो शाह साहब ये जो ख्वाब लोग देख रहे हैं, वोट तो उन्होंने देना है, उन्होंने सोच समझ कर देना है, लेकिन शाह साहब हर पार्टी अपना डीजल पेट्रोल तो बेचती है।
0: देखो जी सारी ये आपने बात सही है, पेट्रोल फेंक रही है सारी पार्टी, पेट्रोल फेंक रही है सारी पाकिस्तान जो पार्टीज हैं इस वक्त, जितनी भी पार्टीज हैं उसमें काफ हो, नून हो, पीपल हो, पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, फजल रहमान की फे हो, ये सब की सब जो है ये पेट्रोल फेंक रही है अवाम के ऊपर, अवाम को आपस में लड़ा रही है अपने वोट के मकसद मकासद के लिए। लेकिन कल को होगा क्या? कल को ये होगा कि वहां पे नफरतें फैल जाएंगी आपस में, खानदान इस इलेक्शन के अंदर खानदान जो है वो बट चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हमारे गुजरात में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, जो रह रहे हैं कि तुमने इसको वोट नहीं देना, इसको वोट देना, आपस में इन्होंने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया इनके झूठे। लेकिन कल को इन्होंने कोई काम नहीं करना, कल को इन्होंने कोई ऐसी काम नहीं करनी, ये हैं पेड बाय यूएई, ये एजेंट्स हैं और ये लोग आए हैं, और जब तक ये
1: शाह साहब आपने कम्यून के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहीं पे ब्रेकिंग न्यूज दी थी, तो शाह साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो हम अपने सामान्य नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन में नू लीग जो है अगले इलेक्शन में हुकूमत बनाने जा रही है, कुछ भी हो सकता है आखिरी टाइम पर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो आज की जो ताज़ा मैं आप ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कि कश्मीर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और ये अकल भी कहती है और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, जितनी बड़ी कंपेन की जा रही है, जितने बड़े तरीके से की जा रही है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, शाह साहब वोटर सपोर्टर को तो नज़र आता है, हमें सहूलियात क्यों कौन देगा, पंजाब को देखा जाए दूसरे जब सूबे देखते हैं तो वो कहते हैं पंजाब में क्यों तरक्की हो रही है, बजट तो हमें भी मिलता है, बजट तो कश्मीर की तरफ भी जाता है, बजट तो केपीके में भी जाता है, बजट तो सिंध में भी जाता है, डेफिनेट तरक्की हो रही होगी जहाँ जहाँ हो रही है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, शाह साहब आप क्या कहेंगे इस पर, थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा कि नून लीग का हुकूमत बनाने जा रही है आज़ाद कश्मीर।
0: नहीं बना सकते, अगर असूली तौर पर देखें जो आईन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक ये जाकर आजाद कश्मीर के जो अपनी अपनी उनकी अवामी ताकत है, उनकी अपनी जो पार्टीज हैं उनके अंदर ये इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनके आप पंजाब से उड़े या आप अपने इलाके इस्लामाबाद पिंडी से जाएं तो आप आजाद कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, जब आपको ये अख्तियार वो आईन नहीं दे रहा तो फिर आपको ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमारी सियासी पार्टी है। देखिए जब इंडिया वाले जो है वो सूबा कश्मीर में अपनी पार्टियों को की सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वायलेशन कर रहे हैं, तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वाकई ही कश्मीरियों के हक पे दोनों मुल्क जो है ये डाका डालते हैं, इनको कोई हक नहीं कि आईन के मुताबिक ये जाकर और ऐसी बातें करें और ये कह रही कि हमारी पार्टी जीतेगी हमारी पार्टी जीतेगी, ये इनको नहीं कहना चाहिए बल्कि उनको आजाद छोड़ देना चाहिए, आजाद कश्मीर के लोग जो है वो खुद अपनी पार्टी बनाए और उनको ये हक हासिल है कि अगर वो पाकिस्तान में
1: तो उनकी अपनी बनी हुई है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनका अपना वजीर आजम है, उनके अपने वजीर कानून है, उनके अपने सदर है, पार्टियां तो बनी हुई हैं, तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया,
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। धूप और साया साथ साथ चल रहे हैं, सियासत भी साथ साथ चल रही है और ख़बरें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वक्त हम आपको अपने थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब के पास लेकर चलते हैं कि उनके पास आज क्या है। शाह साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको।
2: आपके नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम शाह साहब, मौसम और ये सारी चीजें ठंडा गर्म चलता रहता है, सियासत भी चलती रहती है, आज क्या लेकर आए हैं हमारे सामान्य नाज़रीन के लिए?
3: देखिये, इस वक्त मौसम जो है वो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। हम लोग पिछले एक हफ्ते कुछ गर्मी हुई थी लेकिन बारिशों की वजह से, क्योंकि सख्त पानी की कमी हो रही है पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पानी, पीने वाले पानी की कमी हो रही थी, इसलिए बारिशों का डेनमार्क के अंदर होना बहुत ही जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा मौसम यहाँ पे बना दिया कि आज भी वो कह रहे हैं कि डेनमार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तेज, जो जिसको स्काइप कहा जाता है, वो बारिश होगी। और ये अच्छा शगुन है कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, नबातात और हर किस्म के जो दूसरी चीजें हैवानात पर हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है। जमीन के अंदर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको पानी की बहुत शदत से जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला की ये रहमत है और रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और उनकी भी जो है प्रॉब्लम वो बारिश की वजह से सामने आ रही है, हर एक चीज हो रही है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और बिल्कुल इस तरह का मौसम है जैसे कि हम मरी में आए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और ये हवा जो है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब सेहत के लिए बहुत अच्छी है, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी फिर जो है सियासतदान बात करेंगे, अभी तो छुट्टियां पर हैं, तो अभी तो शुगर लगा हुआ हर तरीके का, खबरें फिर भी आ रही हैं, तो क्या खबरें भी तुमको बताया मैं?
3: देखिए जी, खबरें इस वक्त तो इंतहाई, पूरा दुनिया, पूरा यूरोप, इवन डेनमार्क जो है यूरोप के अंदर, हमने अगले दिन भी ये बात की थी कि यूक्रेन के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हालात जो है वो सियासी, वो इस वक्त डेनमार्क के अंदर खराब है। लेकिन अगर हमारे सियासतदान सिर्फ इस बात को ये अजम उठाए हुए हैं कि हमारे, हमारी फैमिली, हमारी बात, हमारा ये जो घूमना है बात छुट्टियों पे, ये बहुत जरूरी है, हम छुट्टियों पे हैं, तो फिर वो सियासतदान ही है, फिर के वो आम वर्कर हैं जो कि छुट्टियों पे चले गए हैं और उनको अवाम और सियासत का कोई उनका ओना बिछोना आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ नहीं है। सियासतदान, जैसे मैंने पहले कहा था नाज़रीन को, कि सियासतदान वैसी है जैसे एक जज होता है हर वक्त ड्यूटी पे, जैसे एक पुलिस वाला होता है हर वक्त ड्यूटी पे, एक फौजी होता है हर वक्त ड्यूटी पे, तो सियासतदान जो होता है वो हर वक्त सियासत ही करता है, क्योंकि उसका जो अज़्म होता है वो अवाम की बेहतरी के लिए होता है, अवाम को इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, अवाम के साथ उसका रابطہ जुड़ा रहता है ताकि अवाम कल को उसको यतीमी की सूरत में बनाकर लोगों के सामने जाकर ये ना कहना चाहिए कि जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे वोट डालने, नहीं, बल्कि लोगों को इल्म होना चाहिए कि ये उनके लिए जाग रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। तो हमारे सियासतदानों को आना चाहिए। अभी अगस्त का महीना आ रहा है, ये जुलाई का महीना तकरीबन खत्म हो गया, तो सितंबर, 5 सितंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस निकले जा रहा है जो फॉरनर्स के खिलाफ है। इसी तरीके से जो कवानीन है यहाँ के, मैंने हजार बार ये बात आपके रेडियो से, आपकी जरिए से ये बात नशर की है कि डेनिश आइन और डेनिश लॉज में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे लोग, हमारे सियासतदान जो हमारी जुबान, अहले जुबान है हमारे, वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि जी नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे वो कानून को सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप महफिलें लगा रहे हैं, آپ کے پاس اس وقت بہت بڑے چانس ہے, اتنے مینگو فیسٹیولز ہو رہے ہیں کوپن ہیگن کے اندر, کوپن ہیگن سے باہر ہو رہے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے اپنے سٹال لگا سکتے ہیں, لوگوں کو ہر زبان کے اندر انفارمیشن مہیا کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے ذاتی طور پہ, یعنی کہ آپ صرف 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے جائیں مینگو خرید رہے, یا اپنا فوٹو سیشن کرانے کے لیے مخصوص لوگوں سے جفے مارنے کے ذریعے آپ جائیں, یا اگر کہیں کرکٹ میں ظاہر ہو کر آپ یہ کہیں جی کہ اس سے لوگوں پہ بہت زیادہ ہمارے اثرات پیدا ہو گئے, نہیں یہ غلط چیز ہے. آپ کو ہر انسان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ان سے ان کی مشکلات کا پوچھنا چاہیے, صرف السلام علیکم کرنا یا فوٹو کا سیشن کرنے سے نہیں, آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کو, خصوصی طور پہ جو ہماری وہاں پہ بہنیں بیٹیاں آئی ہوتی ہیں لیڈیز, آپ کو ان سے مخاطب ہونا چاہیے, ان کو اوپنلی یہ بتانا چاہیے کہ یہاں کے قوانین کیا بنے ہیں, یہاں پہ کیا سختی ہیں, اب کمیون میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا بتائے, یہاں کے جو میڈیکل بیماری پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ علم نہیں کہ جب ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو وہ میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر سے تو لکھوا لیتے ہیں لیکن جا کے اس کو اپوتھیک سے بائی نہیں کرتے, جب تک وہ اپوتھیک سے بائی نہیں کرتے تو کمیون کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے, گورنمنٹ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں لیکن یہ چیزیں اس نے خریدی نہیں, تو اس پہ اس کا جھوٹ سچ پکڑا جاتا ہے, بعد میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں جی کسی نے ہماری شکایت کر دی, دیکھیں جی فلانے نے یہ کر دیا, دیکھیں جو میڈیسن جو آپ کلیئر کر رہے ہیں, جو آپ یہ ڈاکٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے گھٹنوں کی یا مجھے کمر کی یا مجھے جو بیماری ہے اس کی دوائیات جو ہیں جو بھی وہ لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر, وہ آپ کو بائی کرنی پڑیں گی, اگر آپ بائی نہیں کرتے تو وہ آپ کے کمیون کے پیج پہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ دوائی لی, اس کا کتنا آپ کے دوائیوں کا سالانہ خرچہ کتنا, ماہانہ خرچہ کتنا, یہ وہاں پہ آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, یہ کام ہمارا بتانے کا نہیں, یہ کام ہے جو سیاستدان جو کام کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ ہم ویلفیئر تنظیمیں چلا رہے ہیں, یہاں پہ جو تنظیمات بنی ہیں یہ ان کا لوگوں کا کام ہے کہ آ کے لوگوں کو اویئرنیس دے, اسی طریقے سے جیسے یہ مینگو فیسٹیولز ہیں یہ دوسری چیزیں ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ پبلک میں بھی آ رہی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن کیونکہ یہ لوگوں کا کام ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو یہ کان دھرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسپلوڈ ہو چکی ہیں, کب اس کے اوپر کام ہوگا میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو چکے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو, یہ ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ یہاں پہ مینگو فیسٹیول لگ رہے ہیں, کرکٹ ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو لیگلائز طریقے سے لے کے چلیں, لوگوں کو انفارمیشن دیں. راجہ صاحب میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جہاں پہ بھی فوڈ فیسٹیول لگتے ہیں اب یہ فوڈ فیسٹیول جو ہے یہ باقاعدہ آپ کو حکومت یعنی کہ لوکل کمیون کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لگا سکتے, آپ کو کمیون کو ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کون کون سی فوڈ ہوگی, کون کون سی چیزیں ہوں گی, یہ سارا کچھ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پہ لاگو ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا پڑے گا, تو یہ کافی چیزیں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں پڑھنے میں آ رہی ہیں, اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا ہے اتنا زیادہ پیجز ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں, پہلے چند ایک ہوتے تھے کہ واٹس ایپ پہ آ گیا, فیس بک پہ آ گیا, ایک تو سوشل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے مسائل پہ آ گیا, اب تو آپ دیکھیں کہ پولیس کی اپنی ایک ویب سائٹ بن چکی ہوئی ہے جو ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں کہ پورے شی لینڈ میں کیا ہو گیا, یو لینڈ میں کیا ہو گیا, فیون میں کیا ہو گیا, کون کون سے کرائم کون کون سے رجسٹرڈ ہوئے, وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں, کس نے گاڑی تیز کی, کس نے گاڑی کس کا چلان ہوا, وہ سب کچھ جو ہے, تو ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے لوگوں کو یہ علم بتائیں کہ دیکھیں بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں, بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, مخالفین جو مرضی کے اس بات پہ, سکندر صدیق جو ہے ملک سکندر اس نے 2-3 آرٹیکلز لکھے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس نے لکھے ہیں कि यहाँ की जो अवेयरनेस है, हालांकि वो भी बच्चों के साथ मेरा ख्याल में गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप में कहीं गया हुआ था, तो उसने भी काफी बात की है। और ये चीजें हमारे दूसरे सियासतदानों को भी चाहिए कि वो भी आगे आए और अपने हालात के बारे में बताएं, बल्कि यह नहीं कि वो आपस में एक दूसरे के बैक बाइटिंग जिसको कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे की गबियत करें। तो मैं अपने यंगस्टर से यही उम्मीद रखता हूं कि आप जो हैं वो अपने रास्ता बनाएं, क्योंकि फल्के थिंक के इलेक्शन जो हैं वो किसी वक्त भी इस मुल्क में दोबारा होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त जितनी भी पार्टियां हैं जो इस वक्त हुकूमत को पीडीएम को लेकर चल रही हैं, उनके अंदर अख्तलाफात बड़े बढ़ रहे हैं। आप देखें कि सोशल डेमोक्रेट ने क्या किया है, मोन्स लुकिटॉफ ने फॉरन से पहले जो इनकी फॉरन पॉलिसी वुलेनिंग पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद की है, उससे पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, और अब जो है सोशल डेमोक्रेट जो है वो बिल्कुल जो उसके अंदर पुराने लोग बैठे हुए हैं या सही सोशलिज्म के जो नजरियात रखने वाले लोग हैं वो ये ब्लू ब्लॉक की जो पॉलिसी सोशल डेमोक्रेट में घुसाई हुई है और हुकूमत कर रही है उसको डिमोलिश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो अपने पर दोबारा फैला रही है। और अब सोशल डेमोक्रेट क्या करने जा रही है ये भी एक डेट मार्क के सामने वाजह हो जाएगा कि ये लोग कहाँ तक असर रसूख रखते हैं। आपको पता है कि मोन्स लुकिटॉफ जो है ये बहुत ही एक काबिल इंसान है और इंसान हमदर्द, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो डेनिश आइन है सोशल डेमोक्रेट्स की उस हिस्से की जो आइन पे अलमदारी चाहते हैं, जो आइन पे काम करना चाहते हैं, उसमें मोन्स लुकिटॉफ और इनके साथियों का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा करदार है। अब वो इस पे एक्टिव हो चुके हैं और इसके साथ अगर आप ये देखें कि रेडिकल वेंसा और इसके साथ एसएफ और इसके साथ जो अल्टरनेटिव और जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां, ये अब हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अभी तक जितने भी सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं, जो उनकी आइन के खिलाफ जो उन्होंने बातें की हैं, यहाँ जो उन्होंने नए लॉ फॉर्सल के ऊपर बातें की हैं, उसके खिलाफ किसी एक पार्टी ने ना कोई प्रोटेस्ट किया है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह हमारी पार्टियों के खिलाफ है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।